0: பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பொது சேவையில் 25 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்வதையொட்டிய சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் ஒளிப்பதிவு. 10:35 மணி முதல் 11 மணி வரை தேன்மழை. 11 மணிக்கு நிகழ்ச்சி நிரல் வானிலை அறிக்கை. 11:10 சிந்தனை மலரை தொடர்ந்து நமது முதன்மை அலைவரிசை நிகழ்ச்சிகள் யாவும் நிறைவு பெறும். இதனிடையே காலை 6 மணி பிற்பகல் 3 மணி ஆகிய நேரங்களில் ஹிந்தியிலும், காலை 6:05, 8:15 பிற்பகல் 2:03, 9:11, 11:05 ஆகிய நேரங்களில் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும். காலை 6:45 மாநில செய்திகளும், காலை 7:15, பகல் 12:40, 7:15 ஆகிய நேரங்களில் தமிழில் செய்திகள் சென்னையிலிருந்து அஞ்சலாகும். மாலை 6:10 புதுச்சேரி வானொலியின் மண்டல செய்திப்பிரிவு வழங்கும் மாநில செய்திகள் ஒலிபரப்பாகும். காலை 10:00, 11:00, 8:58 ஆகிய நேரங்களில் செய்திச் சுருக்கம் கேட்கலாம். இனி கேட்கலாம் எஃப்எம் ரெயின்போ புதுவை 102.8 MHz நிகழ்ச்சி கொடுத்த அறிவிப்புகள். காலை 7:30 வணக்கம் மக்களே. 8:02, 8:30 இனிய நேரம். தலைப்பு, முகமே தெரியாத ஒருத்தர் செஞ்ச சின்ன உதவி. நேரலையில் இணைகிறார் ஆர்ஜே சீனு. 8:55 சைபாலின் இன்று ஒரு தகவல். வழங்கியிருப்பவர் மறைந்த தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள். 9:02 இணைய வழி நேயர்விருப்பம். 10:02 கெட் செட் கோ கேம் ஷோ. 11:02 மெலடி மேஜிக். 12:02 வரலாற்றில் என்று. 12:50 புதின பக்கங்கள். மார்க்சம் கார்கி அவர்கள் எழுதி தோமோசி ரகுநாதன் அவர்கள் மொழிபெயர்ப்பில் வெளிவந்த தாய் புதின தொடர். வாசிப்பவர் ஏ பி எலிசபெத் அவர்கள். 1:02 ஹாய் ஸ்நேகிதியே திரைத்துறையில் பெண்கள். வழங்குகிறார் ஆர்ஜே சிவகங்காவதி. 2:15 ஆளுமை சிறக்க தொடர் நிகழ்ச்சி. சிறப்பு விருந்தினர் எழுத்தாளர் லீனா தமிழ்வாணன் அவர்கள். நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் கேட்கலாம் ஹிந்தி. ஹிந்தியிலும் செய்திகள், அதனை தொடர்ந்து 6:05 ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र

0: के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. PM will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Programme has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the Disability Pension Scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
2: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
1: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. PM Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The PM will also address the gathering on the occasion. India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The Delhi government has announced a payment of 1,370 rupees to students of Municipal Corporation of Delhi schools through direct benefit transfer. In this regard, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that over 70 crore rupees was released yesterday through DBT for uniforms and school bags for more than 5 lakh MCD school students. On this occasion, she also inaugurated educational facilities such as 10 AI and robotics labs, 1,500 printers, signs on wheels,

0: மாநிலங்களிலும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளிலும் பலத்த காற்றுடன் பலத்த மழை இன்று பெய்யக்கூடும். மற்ற இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நாளை நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, மதுரை மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்துடன் கூடிய காற்றுடன் மிக பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஈரோடு, திருப்பூர், விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, கரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை, கடலூர், திருவள்ளூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளிலும் பலத்த காற்றுடன் பலத்த மழைக்கு நாளை வாய்ப்புண்டு. மற்ற இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னைக்கும் அதன் சுற்றுப்புறங்களுக்குமான வானிலை முன்னறிவிப்பு. வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். சில இடங்களில் இடிமின்னலுடன் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புண்டு. வெப்பநிலை 33 முதல் 34 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்த அளவு 25 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கக்கூடும். நாளையும் இதே வானிலை நிலவும் வாய்ப்புண்டு. மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு ஏதுமில்லை. வானிலை அறிக்கை கேட்டீர்கள். அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நிகில் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं के वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा. कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है. उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है. श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही. उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं. श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्षों में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए उन्हें कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है. श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए. गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है. पंजाब में मंगलवार को मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की दिन दहाड़े हुई हत्या और राज्य में मादक पदार्थों के विरोध में हो रहे बंद को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है. राज्य के कई हिस्सों में बाजार बंद हैं. चंडीगढ़ और मोहाली सहित पंचकुला से जुड़ने वाली कई मुख्य और आंतरिक सड़कें अवरुद्ध हैं. पुलिस ने कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था की है. एक रिपोर्ट.
3: कई राजनीतिक पार्टियों, किसान यूनियनों और व्यापारियों के संगठनों ने बंद के आह्वान को समर्थन दिया है. यह बंद मारे गए नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह के पिता भीम सिंह की अपील पर किया गया है. हालांकि प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस और दूसरे इमरजेंसी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं. इस मामले में न्याय की मांग के लिए बनाई गई एक्शन कमेटी ने लोगों से बंद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है. अभी तक राज्य में कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है. बंद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा. राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछलेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछले वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य आधारित प्रमाणीकरण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़कर सशक्त किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कौमार भृत्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था

एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबराकर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओ, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं, आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं, उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हां श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारे

0: हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं।

0: ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है, आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल ठीक है।
4: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जेरापुर जय भारत।
7: जय जेरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
2: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
2: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
8: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
4: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
8: जी।
4: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
8: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
4: बिल्कुल,
8: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
4: जी मंत्री जी।
8: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।

0: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबार खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
1: जोरावर सिंह कहा जा रहे हैं, महाराज जोरावर सिंह।
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
3: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
4: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
5: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे, वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
4: ए सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
1: बिल्कुल।
4: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
4: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: John Abbott! What's wrong? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे. हटो यहाँ से.
0: शाबाश, शाबाश, सारालजन. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा.
4: हुजूर.
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
0: फौजियो, ले चलो इसको.
3: छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे.

0: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
2: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
2: Why?
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
2: Yeah.
3: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
2: तो तुम नहीं मानोगे। देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
2: Actually, you are a fool.
0: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி வானொலி நிலையம் முதன்மை அலைவரிசை நேரம் 10 மணி. நேர்கள் இனி கேட்க இருப்பது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பொது சேவையில் 25 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்வதையொட்டிய சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் ஒளிப்பதிவு.
1: ஏ ஆகாஷ்வாணி ஹை விசேஷ் ஸ்ருங்கலா जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही है गौरा धवनलाल।
2: नमस्कार, हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का नाम है जन सेवा से देश सेवा। हमारी आज की थीम है उद्यमिता और नए भारत की अर्थव्यवस्था। फोकस एरियाज रहेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन। तो आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले स्वागत है मिस्टर अशोक चांडक, जो प्रेसिडेंट IESA में है। अशोक जी, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सेक्रेटरी जनरल एंड CEO PFT चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद।
2: आपसे शुरुआत करते हैं अशोक, एंड आई नो कि सेमीकंडक्टर्स इज आपके एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, आपके एरिया ऑफ पैशन भी है। तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको सेटअप किया था, तो इसका उद्देश्य क्या था?
3: सबसे पहले मैं तो एक लाइन आम भारतीयों के लिए कहूंगा कि सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं, कार चलाते हैं, टीवी देखते हैं, अस्पताल में हमारे इलाज की मशीनों से स्कैनिंग किया जाता है, इस सब के पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए आज खेती, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रक्षा, परिवहन, अंतरिक्ष जैसे सभी क्षेत्रों में चिप्स की जरूरत है। और ये सिर्फ तकनीक का विषय नहीं है, लेकिन ये भारत की अग्रसर होने की बात है। अब सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य जो है, ये शुरू हुआ था 6 साल पहले, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से बोला गया। वो

उसका पॉलिसी नंबर 1 भी अनाउंस हुआ था, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसका प्रमुख उद्देश्य है सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना। वैसे तो भारत काफी लंबे समय से चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर करने में लगा हुआ है, लेकिन ये सारा जो काम है ये दूसरे देशों पर निर्भर होता है और दूसरे देशों की कंपनियों के लिए किया जाता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन उसके वजह से हमारा जो चिप निर्माण का खुद का जो काम है वो आगे कभी बढ़ा नहीं था, और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इसमें पहले चरण में 76,000 करोड़ का 76,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, और अभी दूसरा मिशन भी चालू हुआ है कुछ महीनों पहले, जिसे सेमिकॉन इंडिया 2.0 कहते हैं। इसमें अभी एक्सपांशन किया गया फुल इकोसिस्टम के लिए सपोर्ट करने के लिए, जिसमें चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मशीन्स, मटेरियल्स, R&D और स्किलिंग, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो एक शॉर्ट में कहूंगा अभी कि पहला तो आपूर्ति में भरोसा करना है, इसलिए हमारे चिप उद्योग को यहाँ पर ग्रोथ करना, उनके लिए सपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा, आर्थिक विकास। कोई भी देश के लिए सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि इस पर काफी चीजें निर्भर करती हैं, और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियों को नए अवसर प्रदान होंगे।

0: R&D और स्किलिंग, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो एक शॉर्ट में कहूंगा अभी कि पहला तो आपूर्ति में भरोसा करना है, इसलिए हमारे चिप उद्योग को यहाँ पर ग्रोथ करना, उनके लिए सपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा, आर्थिक विकास। कोई भी देश के लिए सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि इस पर काफी चीजें निर्भर करती हैं और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियों को नए अवसर प्रदान होंगे। और तीसरा, हमारी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, इसको भी बढ़ाना है। तो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम भी दुनिया की तरह चिप बनाते रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम उन क्षेत्रों को मजबूत करें और जहां पर भारत की क्षमता विकसित हो सकती है और भारत दुनिया की जरूरतें भी पूरा कर सकता है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये तो जानते हैं कि सरकार का फोकस चिप मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है और अलग अलग स्कीम्स भी इनको इनकरेज करती हैं, चाहे वो इनोवेशन की हो, चाहे टिंकरिंग लैब्स हो, मगर इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? और आई थिंक अब तक तो थोड़ी जर्नी तो हम तय कर चुके हैं और कुछ चैलेंजेस इसके रिस्पॉन्स में, जहाँ पर और मदद चाहिए इंडस्ट्री को इसके लिए।
2: देखिए, अभी अशोक जी ने बहुत अच्छा पूरा इसको विस्तार से बताया और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेमीकंडक्टर मिशन या हमारे जो अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इनोवेशंस को अपने डेली एंटरप्राइजेज में और कैसे उसमें एंटर कर सकें, इसके बारे में इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इसमें जागरूक है। और जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल में जो पिछले 2-3 साल में एक सेमीकंडक्टर मिशन का एक इकोसिस्टम देश में क्रिएट किया है, सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया है, उसमें सारे जो इंडस्ट्री है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
0: बात ऐड करूंगा यहाँ पर, जो टोटल अभी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो 12 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, इसमें जो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, इसमें करीबन 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें 5 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हो रहे बल्कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ 24 चिप डिजाइन की प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है।
1: आइए सुनते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर ये रिपोर्ट।
3: सेमीकंडक्टर यानी चिप आज की लगभग हर तकनीकी चीज का अहम हिस्सा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना है। इसका लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के तहत ध्यान सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, इसमें चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन यानी फैब, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण पूरी श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक उद्देश्य चिप डिजाइन है। भारत में पहले से ही कई इंजीनियर सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्टार्टअप्स और डिजाइन कंपनियों को टूल्स, फाउंड्री सेवाओं और अन्य सहयोग के जरिए समर्थन देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य देश में चिप डिजाइन उद्योग को तेजी से बढ़ाना और स्वदेशी बौद्धिक संपदा यानी IP विकसित करना है। यह मिशन केवल तकनीकी तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा रोजगार और कौशल विकास से भी जुड़ा है। मिशन में शोध, वैश्विक सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रतिभा विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार निवेश सहायता, तकनीकी साझेदारी और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कदमों पर काम कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन केवल चिप बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा प्रयास है।
1: सो जैसे अभी डॉक्टर मेहता ने कहा कि हम जब बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म है, आई थिंक इंसेप्शन से प्रोडक्शन, और अभी आपने अशोक प्रोडक्शन की बात भी करी, मार्केट में आ गए हैं, आर दे बीइंग यूज्ड, फीडबैक, बिकॉज ये पूरा सर्किट होता है टू ऑल्सो कैप्चर द मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि वो कहते हैं ना हिट द ग्राउंड रनिंग, कब हम लोग इस स्तर पे पहुंचेंगे कि हमारे जो इंटरनली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली हमारी काफी सारी नीड वो सेटिस्फाई कर रहे हैं?
0: इसमें थोड़ा और समय लगेगा, जैसे कि मैंने बताया 5 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके, लेकिन उनके पास भी अभी मैक्सिमम जो सप्लाई होगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रही है अभी, और बाकी 7 प्रोजेक्ट और भी बनेंगे, 1-2 साल में वो ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे जो देश की कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर की, उसकी पार्शियल क्षमता से हम पूरी कर पाएंगे। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि 2030 में भारत में करीबन $103 बिलियन का सेमीकंडक्टर का डिमांड उभर कर आ रहा है। आज हम 2026 की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की डिमांड करीबन $55 बिलियन का है और सप्लाई less than $1 बिलियन और इवन उतना भी नहीं है। तो जैसे ही हमारे ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, हम देख सकते हैं कि करीबन $10 से $20 बिलियन का जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफिल होगा और बाकी हमें फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो परियोजनाएं शुरू होगी प्रोडक्शन में, वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है बाकी अदर कंट्रीज में

0: जिसे मैं कहता हूं डिपेंडेंसी बदल के बन जाएगी इंटरडिपेंडेंसी। मतलब हमें कई बार ये देखने में मिलता है, सुनने में पड़ता है कि कुछ कंट्रीज आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, वो अपने अपने लिमिटेशंस लगाते हैं कुछ देशों के लिए। हमें उस बात से था इसका छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन पर भी कई देश डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें करीबन हजारों टाइप की चिप लगती है कंट्री में और कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो पूरे तो 100% हमारा इसमें सेल्फ रेजिलियंस नहीं होगा, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि करीबन 20% का हमारा 2-3 साल में लक्ष्य पूरा जरूर हो जाएगा इसमें। और साथ में अभी जो नया स्कीम अनाउंस हुआ है, जैसे मैंने बताया 2 महीना पहले, इससे नए प्रोजेक्ट और शुरू होंगे, तो 2030 तक वो प्रोजेक्ट भी अपने प्रोडक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे होते हैं, जिसे ओसैट और असेंबली कहा जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट को 4-5 साल लगते हैं, जिसे फैब्स और फाउंड्री कहा जाता है। तो हमें दोनों का कंबाइनेशन देखना है, इसलिए कहता हूँ कि 2030 में क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हमारी जो अभी प्रोडक्शन हो रही है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऐसा हमें मैसेज मिल रहा है कंपनीज से कि उनका डिमांड पूरा फुलफिल्ड है, मतलब जो कैपेसिटी है फुल्ली बुक्ड है, मुझे बस पूरा रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड का, कुछ इंडियन कंपनीज का। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक क्रेडिबिलिटी बन गया है, ये जो हम ट्रस्ट वर्दीनेस कहते हैं कि भारत में चिप बन गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी ग्लोबल मार्केट में और घरेलू मार्केट में भी उसका अच्छे से उपयोग हो रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये भी जानते हैं कि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है बड़ी फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आते हैं। तो जब हम किसी चीज में, जिसका स्पेशली जेस्टेशन पीरियड लंबा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बीच में टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी स्टार्टअप्स, हमारा इकोसिस्टम गियर्ड अप है कि वो मोबिलिटी, वो एक्सपेंशन और नई टेक्नोलॉजी को अंदर लाने के लिए हम लोग इक्विप्ड हैं दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है सेमीकंडक्टर्स में?
2: जी बिल्कुल, ये तो सेमीकंडक्टर की एक टेक्नोलॉजी है, बट अगर आप ओवरऑल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या हमारे एमएसएमईज हैं, क्या वो इसके लिए गियर्ड अप हैं या नहीं है, देश में क्या वो एक इनोवेशन का इकोसिस्टम है या नहीं है, ये आपने सवाल पूछा, तो डेफिनेटली मैं इस पे कहूंगा कि जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, हमारे देश में सिर्फ 400 रजिस्टर्ड जो है स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हमें बात कर रहे हैं 2,25,000 से ज्यादा हमारे देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न ऑलरेडी देश में हो चुके हैं। कहने का मतलब है आज हर जो युवा यहाँ पे है, क्योंकि हमारी कंट्री में 65% लोग यंग हैं जो कि 35 इयर्स के कम की एज के हैं, तो मेन इसमें मकसद ये है कि युवाओं को हम सिर्फ जॉब सीकर ना बनाएं, बल्कि जॉब क्रिएटर की इसमें भूमिका हमारे युवा निभाएं। तो हमारी एम्बिशन अभी ये है कि सबसे पहले डिजाइन इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, लीड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि डिजाइन भी यहाँ पे हो और इनोवेशन भी इंडिया में हो और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में हो, बट इंडिया जो है वर्ल्ड में लीड करे टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की जहां तक एडॉप्शन की बात है, आज हमारे देश में, क्योंकि हमारे बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही एस्पायरिंग हमारी सोसाइटी है, आज देख लीजिए 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हमारे देश में यूज हो रहे हैं और हमारे देश का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है, और हमने जो UPI का है पूरा एग्जाम्पल यहाँ देश में है, और किस तरीके से कोविड के टाइम में हमने नई टेक्नोलॉजी अपना के और देश में जिस तरीके से हमने कोविड को एक अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इतना आबादी वाला देश था, वहां पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं समझता हूं जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम बना है, एक इनोवेशन का इकोसिस्टम बना है, जो कि आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जो हमारी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगा, जब हम विकसित भारत 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल जो पिलर होगा हमारे ग्रोथ का वो है टेक्नोलॉजी, और इंडिया सारी टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है और जिस तरीके से हमारे युवा जो है आज, चाहे आप स्टार्टअप की बात करें, चाहे स्पेस में, जस्ट 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंडिया भी है कि जिन्होंने स्पेस में जो है प्राइवेट सेक्टर और स्पेशली युवा जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो ओवरऑल एक देश में एक इकोसिस्टम बन रहा है, उसमें सारे हमारे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे जो लोग हैं टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, और जो जितने आज अगर स्टार्टअप भी हमारे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, बट हमें ये करना है कि जो टेक्नोलॉजी हम देश में एक ला रहे हैं नई नई, उससे जो है किस तरीके से हम एक आम आदमी की जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन जब तक ना हो तब तक उसका जो कि हर आम आदमी चाहे गांव में हो शहर में हो वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो और उसको यूज कर सके, और यही एक हमारे देश में इसमें खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। खास तौर पे आपके एग्जांपल है यूपीआई, और अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का जो हमारे देश में जितना सस्ता इंटरनेट है दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पे भी इतना जो सस्ता इंटरनेट नहीं है। तो जो इस टाइम ओवरऑल हमने जो नया एक कदम लिया है सेमीकंडक्टर का, डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरा जो हमारे अटल इनोवेशन सेंटर्स हैं उसका डेफिनेटली मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम स्कूल लेवल में कॉलेज लेवल में और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं आईआईटीज हैं या दूसरे आईटीआईज हैं कैसे हम अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू अपने युवाओं में अपने यंगस्टर्स में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए कैसे उनको और इसमें पार्टिसिपेट करवाएं। और ये पूरे देश में चल रहा है मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हर स्कीम में ये है कि उसमें कैसे हम युवाओं को जोड़ सकें और युवा इसमें मैक्सिमम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और फाइनली यही हमारे देश की विकसित भारत बाई 2047 की उसकी जो अगर मैं कहूँगा फाउंडेशन स्टोन है जो आधारशिला है वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी रहेगी।
1: अशोक, डॉक्टर मेहता ने कहा नए कदम, आपने भी कहा कि न्यू इनोवेशन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नई चीज शुरुआत होती है तो टीथिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं। आपको क्या लगता है कि फिलहाल कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस, वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे अशोक हमारे लिसनर्स के साथ?
0: भारत में जैसा मैंने पहले कहा कि चिप डिजाइन का काम तो कई सालों से हो रहा है, 2-3 दशक से हो रहा है, तो वहां पर हमारे पास मैन पावर ट्रेंड पूल ऑफ द इंजीनियरिंग अवेलेबल है। करीबन वर्ल्ड का 20% चिप डिजाइन इंडियन इंजीनियर्स करते हैं, वो मुद्दा तो क्लियर हो गया। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भारत के पास कभी ये इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट ऑपरेशनल था जो कि मोहाली चंडीगढ़ के पास में SCL नाम से बोला जाता है, सेमीकंडक्टर लैब लिमिटेड, उतना ही था एक छोटा सा ग्लोबल कंपैरिजन में। तो भारत का जब ये एक जर्नी तय हो गया, हमारा जो रोड मैप बन गया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना जरूरी है अपने आत्मनिर्भरता के लिए और ऑल्सो ग्लोबल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे पास उसके ट्रेंड मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है वैसे देखा जाए। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम इन चीज़ों को भारत में कैसे लाएं। और इसीलिए ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना हुई थी उसके तहत कुछ इंसेंटिव दिया गया है ग्लोबल कंपनीज को कि वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करें। और उसके साथ में मतलब ये हो गया कि हमें जो मेन चैलेंज है ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या ग्लोबल कंपनीज खुद अपना यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग सेट करें, ये एक बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी दृष्टिकोण के तहत काम चल रहा है, हमें उसमें पार्शियल सक्सेस है। मतलब जैसा मैंने बताया कि कुछ 12 प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए थे उसमें एक कैटेगरी होती है असेंबली यानी टेस्ट, OSAT बोला जाता है, उसमें हमें सक्सेस हो गया है क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट भी कम होता है और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी थोड़ा इजी है मैनेज करना। लेकिन जो दूसरा क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा है जिसे फैब कहा जाता है, फाउंड्री वेफर बनाने की स्थिति, उसके लिए अभी भी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट मिले हैं। एक टाटा का है, बड़ा इन्वेस्टमेंट $8-9 बिलियन का, जिन्होंने एक कोलैबोरेटर लिया है ताइवान से, और दूसरा है सिक्स सेम नाम की कंपनी जो उड़ीसा में आ रही है, उन्होंने भी एक कोलैबोरेटर लिया। तो सिर्फ 2 प्लांट है। तो हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज रहेगी, हम कैसे ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें, या उनसे हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट वेंचर बनाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से यही है। दूसरी बात, अब इंडिया के पास में जब मैंने कहा कि हमारे पास चिप डिजाइन के क्षमता है, लेकिन हमारी जो क्षमता है डिजाइन की वो थोड़ी कैप्टिव डिजाइन सेंटर के तहत बनी हुई है। तो चिप डिजाइन से जो एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की है उसके हिसाब से चिप बना के उसका प्रोडक्ट बनाए और फिर मार्केट में लाए, उसके लिए भी हमें चैलेंज है। अभी जैसे अभी रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट्स पर भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए हेल्प की थी, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर है उसकी चिप बनाने के लिए गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, और जो CCTV है जो कैमराज लग रहे हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे इस टाइप के कई उदाहरण हैं जहां पर सरकार की मदद से, इंसेंटिव से ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन दो क्लियर कट टू समराइज मैं कहूंगा, 2 मुद्दे हैं जहां पर हमें मेन चुनौतियां हैं। एक, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी लाएं या ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आने के लिए प्रेरित करें, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है उसमें लेकिन काफी काम करना बाकी है। और दूसरा, जो हमारी चिप डिजाइन की क्षमता है उसको हम चेंज करें टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्रिएशन, उसका भी अभी काम चल रहा है। ये दोनों चुनौतियों का हमें आगे सामना करना पड़ेगा और इसके रास्ते निकाल कर आगे बढ़ना होगा।
1: आइए सुनते हैं स्टार्टअप इंडिया पर ये रिपोर्ट।
3: स्टार्टअप इंडिया पहल को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत युवाओं, उद्यमियों और नए विचारों वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता, आसान नियमों और बेहतर नेटवर्किंग के अवसर देने की कोशिश की जाती है। स्टार्टअप का मतलब केवल

0: बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी नए विचार पर काम कर रहा है, चाहे वह खेती के लिए तकनीक हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, ई कॉमर्स हो या क्लीन एनर्जी, तो वह भी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य ऐसे विचारों को बिजनेस में बदलने में मदद करना है। इस पहल का एक अहम हिस्सा है DPIIT रिकॉग्निशन, यानी विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता। यह मान्यता पाने के बाद स्टार्टअप कई फायदे पा सकते हैं, जैसे कर संबंधी छूट, आसान अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की तेज प्रक्रिया और कई सरकारी योजनाओं तक पहुंच। पात्र स्टार्टअप्स को अपने शुरुआती 10 वर्षों में से लगातार 3 वित्त वर्षों के लिए आयकर छूट का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। स्टार्टअप इंडिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू इनक्यूबेटर है। इनक्यूबेटर नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और फंडिंग से जुड़ी जानकारी देता है। हालांकि स्टार्टअप की यात्रा आसान नहीं होती। शुरुआती फंडिंग, सही मार्केट, टीम बनाना, नियमों को समझना और लगातार बदलती तकनीक, ये सब चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल नए उद्यमियों को एक सहारा देने की कोशिश करती है। स्टार्टअप इंडिया केवल नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की युवा प्रतिभा को रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: तो आप सही बोल रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मेहता कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने किया है, ईज ऑफ वर्किंग, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कम कर रही है, काफी बहुत सारा एफर्ट किया गया है, पर आपको भी इंडस्ट्री से फीडबैक मिलती होगी रेगुलर बेसिस पे, आपके फोरम्स होते हैं। कुछ मेन चीजें जो डिमांड है, जो आस्क है इंडस्ट्री की, जो आप सरकार के सामने रख सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, हमारा टाइम टू टाइम इसमें डिस्कशन मिनिस्ट्रीज के साथ होता रहता है और सरकार इस बारे में बहुत तत्पर है कि कैसे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल डेफिनेटली ये रहता है कि कैसे अच्छी पॉलिसीज बनाएं, बट एट द सेम टाइम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट्स पे होता है। जो सबसे बड़ी बात आती है जब कोई फैक्ट्री आती है, जब कोई नया कारोबार स्थापित करना चाहता है, कोई भी नया उद्यमी है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी है, और हालांकि कई स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल गुजरात ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, अभी उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जिसमें कि लैंड जो है डिजिटली जो उसके मैप्स हैं वो सारे अवेलेबल हों, और कैसे कितनी इजी तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली जब कोई इन्वेस्टर आता है उसके लिए पूरा, ये मैं कह रहा हूँ कि आज देश में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, लेबर लॉज की बात है, अभी जो नए लेबर फोर कोड्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड है कितनी जल्दी हम उन्हें पावर कनेक्शन दे सकते हैं, कितनी जल्दी लैंड अलॉट कर सकते हैं और किस दाम में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका है लैंड की। और इसमें हमारा ये सजेशन रहा है कि हम जो है एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगाएं, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि बड़ी कंपनी तो अपना कर लेती है, बड़ी कंपनीज को इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो स्मॉल कंपनीज हैं, छोटे व्यापारी हैं, MSMEs हैं, उनको आज हमें एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमने जो गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि एक ऐसा बनाया जाए जिसमें कि कोई भी उद्यमी जाए और अपना वो उनको क्या चाहिए, पावर कनेक्शन चाहिए और सारी जो उनको अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, या सारे अप्रूवल्स के साथ वो पावर कनेक्शन उनको मिल जाए, उनको जगह मिल जाए, जिससे कि वो अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर सकें। हालांकि उसमें एक टाइमलाइन रख दी जाए कि अगर आपको हम दे रहे हैं तो इतने टाइम में इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली वो डिपेंड करे कि कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, उसके बेसिस पे जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस ज्योग्राफी में जो चीज़ अवेलेबल है उसी टाइप की अगर कुछ इंडस्ट्रियल अगर क्लस्टर बनाए जाएं जो कि प्लग एंड प्ले सिस्टम के हों, उससे जो है स्पेशली छोटे व्यापारियों को हम इनकरेज कर सकते हैं कि कैसे वो इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मैक्सिमम हिस्सा ले सकें। और अगर आप आज हम देखें तो स्टार्टअप्स हमारे देश में बहुत आ रहे हैं, बट मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो है वो टेक प्लेटफॉर्म्स और इस पे आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग में लाने की। और मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत ही टीडियस काम है, जिसमें कि डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ये पूरा राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो करना है। तो मेरे ख्याल से इस पे एक अगर प्लग एंड प्ले सिस्टम बन जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन जाए, उसमें कई ऐसे उद्यमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत देश में तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि आज भी हम कई टेक्नोलॉजीज पे, कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए हमें बाहर के

0: देशों में ही कई देशों में डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि आज हमने करीब 40 देशों के साथ एफटीए कर ले हैं, बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के लिए खड़ा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें करीब $1 ट्रिलियन मार्केट करीब खड़ा कर दिया है। और ईयू है, यूके है, न्यूजीलैंड है, अपना जीसीसी कंट्रीज में है, ये सारे जो है हमारे एफटीए साइन हो गए हैं। बट उस एफटीए का रियल फायदा तब मिलेगा जब जो हमारे प्रोडक्ट्स हों, जो यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे जो उद्यमी, वो जो है ग्लोबली बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो। उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो ओवरऑल अगर आप देखें गति शक्ति मिशन की वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें भी काफी अच्छा, उसमें भी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आ चुकी है। और जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, बट वहां पे भी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है। तो मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इसमें बहुत अच्छा एक सुधार आया है। बट अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की तरफ प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम अगर देश में तैयार हो जाए तो और भी जल्दी इसमें गति आ सकती है।
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है अशोक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी बात की डॉक्टर मेहता ने कि एमएसएमईज को कैसे हम प्लग एंड प्ले मॉडल में लाएं, बिकॉज उनकी आई थिंक एक वल्नरेबल ग्रुप है एमएसएमईज, और यही एक ग्रुप है जो लेबर इंटेंसिव भी होता है और जॉब्स की भी हमें ज़रूरत है इस देश में। सो आई थिंक कहीं इनको स्पेशल बेनिफिट्स तो दिए जा रहे हैं, बट ये भी कहा डॉक्टर मेहता ने कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक टीडियस काम है, एक टीडियस चीज़ है, और इसमें किसी को अंदर आने के लिए जब और लो हैंगिंग फ्रूट है, जब और आसान वाली चीज़ें हैं जैसे टेक प्लेटफॉर्म करें तो इट्स ईजियर, उसमें ज़्यादा आसान है। तो युवा इधर से आके मैन्युफैक्चरिंग में आए, इस वल्नरेबल ग्रुप में आए, आपका क्या फीडबैक, आपको क्या मिली है इसके बारे में, और कैसे सरकार इस वल्नरेबल ग्रुप को और इनकरेज कर सकती है, स्ट्रॉन्ग कर सकती है, क्योंकि ये तो बैकबोन है। अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज लें, उनके जो डाउनलाइन वेंडर्स होते हैं वो भी एमएसएमईज ही होते हैं।
2: मैं कहूंगा कि इसमें भारतीय कंपनीज के लिए एक क्षेत्र में काफी अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं और कुछ उसके मटेरियलाइज भी हो रहे हैं। विजुअली ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं ये तो हजारों करोड़ की फैक्ट्री लगती है इसमें, है सही बात है, $5 बिलियन, $8 बिलियन वगैरह, लेकिन ये उद्योग सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। इसमें फैक्ट्री बनने के बाद चलाने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती है, जिसमें कुछ मशीन्स है, मटेरियल्स है, केमिकल्स है, गैसेस है, कुछ चिप डिज़ाइन का मामला है, प्रोडक्ट क्रिएशन है, उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें वाहनों की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। तो हमें ये एक मन में और माइंड में पिक्चर क्रिएट करना होगा कि ये सिर्फ हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, है लेकिन उसके साथ में बाकी लोगों को इसमें अवसर है। अब रही सवाल बात युवाओं की, तो मैं कहूँगा कि इसमें युवाओं के लिए और न्यू जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो शुरू हुआ था उसे कहते हैं C2S, दैट इज चिप टू सिलिकन। इसके तहत करीबन 400 इंस्टीट्यूट को हाई कॉस्ट डिजाइन टूल्स सरकार ने उपलब्ध करा दिए, जो जिसके लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है अदरवाइज, तो वो करा दिए। उसके तहत करीबन 65,000 स्टूडेंट्स को इसमें फायदा हुआ है। वो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंसिव टूल लेके अपने चिप डिजाइन करके, जिनका चिप अच्छा रहा उन्होंने कुछ सैंपल भी मैन्युफैक्चरिंग किए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट सेमिकॉन इंडिया हुआ था 17-18-19 सितंबर दिल्ली में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने 20 स्टूडेंट्स के हाथों से 20 चिप का उन्होंने उद्घाटन किया, बताया कि ये 20 चिप जो है उन्होंने बनाए हैं, उनको 20 चिप समर्पित किए गए प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित किए। तो ये देखिए एक बड़ा एग्जांपल है कि स्टूडेंट के लिए उसमें काफी काम चल रहा है। दूसरी बात कि इसमें इतना बड़ा ब्रॉड इकोसिस्टम है हमारा सेमीकंडक्टर का, जिससे कि अलग अलग रुचि और योग्यता वाले लोगों के लिए अवसर है। अगर किसी की रुचि मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर में है, तो वो चिप डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हैं। किसको व्यावहारिक काम करना पसंद है तो वो मशीन निर्माण के लिए, रख रखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता जांच मतलब टेस्टिंग के लिए अवसर तलाश कर सकते हैं। अगर किसी की रुचि विज्ञान में है तो वो इसमें मटेरियल्स और R&D इनोवेशन उस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी उद्यमी बनना चाहता है तो अपना उत्पाद या किसी उद्योग की समस्या का समाधान भी विकसित करते थे। तो इसमें मैं कहूँगा विद्यार्थियों को बुनियादी पढ़ाई मजबूत करनी चाहिए, पढ़ाई के और एक क्षेत्र के लिए नए नए अवसर मिल रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने करिकुलम मॉडिफाई कर दिया है, अपडेट कर दिया है, जिससे कि सेमीकंडक्टर का काम उन्हें सीखने मिलेगा। कई यूनिवर्सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग की पायलट लाइंस का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी, जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक्सपीरियंस एक जरूरी होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग

0: लिए वो भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। और मैं आपके आकाशवाणी द्वारा यही कहूंगा कि जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें। सो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन जो टॉपिक है, ये हमेशा चलते रहता है, मैं कहूंगा वो हमारे साथ काम करें, जिससे कि विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उद्योग में वास्तव की किस कौशल की जरूरत है। और कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जाएगी। अब वैसे तो भारत की पास बड़ी युवा आबादी है, और इस ताकत को हम अच्छी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और नए विचारों के तौर अगर विकसित जोड़ दे तो हमारे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत कार्यबल तैयार कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी।
1: डॉक्टर मेहता, आते हैं ग्लोबल लेवल पे ये समझने के लिए कि हम बना रहे हैं, हमारी अपनी डिमांड है, बट कहीं इंटरकनेक्टेडनेस की बात हुई, वी आर ऑल्सो रीजनल पावर। तो आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया रीजन में भारत की जो हमने हमने प्रोग्रेस बनाया है इस एरिया में, उसका पेस इज फास्ट इनफ कि हमें उसमें थोड़ी और गति दिखानी पड़ेगी?
2: देखिए, जो आज ग्लोबल साउथ की अगर आप बात करें, भारत ऑलरेडी अपनी लीडरशिप उसमें बनाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली हमारे साथ और भी देश हैं, जो कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है, जो कि इसमें स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत आगे चाइना हमसे है। बट द सेम टाइम जो हमने स्टेप लिए हैं पिछले कई दिनों में, क्योंकि लीडरशिप में सिर्फ आपके पास कितना आपकी बड़ी इकोनॉमी है या क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही एक चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसमें ये भी एक ज़रूरी होता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है, क्या आपका जुडिशियल प्रोसेस है, क्या आपका जुडिशियल सिस्टम है, और आईपीआर के किस तरीके से आपके प्रोटेक्शन है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आपने देखा तो आज अगर कोई भी ऐसा देश है जब चाइना प्लस वन की बात कर रही है, तो उसमें इंडिया जो है नंबर वन उनके दिमाग में रहता है। तो इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन क्रिएट जो है करी है। यही नहीं, अगर आप G20 की बात करें, हमने इतने सारे जो नए स्टेप्स लिए हैं जिसमें G20 में हमने लीड ली है, और किस तरीके से हमने कोविड के टाइम में इंडिया में सिर्फ एक वैक्सीन बनाई नहीं बल्कि अपने कई देशों को हमने वैक्सीन दी है कोविड के टाइम में। और जब भी कहीं देश में या दुनिया में कहीं पे कोई आपदा आती है, एशिया में आपने देखा होगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करता है तो इंडिया करता है। चाहे आपदा कहीं पे भी आई हो, अभी नेपाल में हमने देखा आपदा आई, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया। और जहां जहां आज कोई भी ऐसी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, पूरे लोग जो है भारत से अपेक्षा रखते हैं कि भारत उसमें हस्तक्षेप करे। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए संभव हुआ है कि पिछले जो भी 10-12 साल में भारत ने एक जो जिस तरीके से काम किए हैं, और हमारा एक एक स्टेप है, क्योंकि एक लीडरशिप पोजीशन में हम आना चाहते हैं और उसके लिए हमने एक पूरा जो करना चाहिए एज अ लीडर जो देश देखना चाहता है, वो स्टेप हमेशा हमने लिए हैं। और मैं समझता हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर अगर कोई है जिसमें पूरी दुनिया विश्वास करती है, वो भारत देश है। और ये करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी ऐसी हमारी डेफिनेटली हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है और ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस टाइम जबकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस चैलेंजेस चल रहे हैं, और कोविड के बाद जिस तरीके से हमने जो कोविड के मार से जो देश उभर रहे हैं उसमें भी सबसे पहले भारत उभरा, और इस टाइम भी जब पूरी दुनिया में कई सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, दो दो जंग बिल्कुल चली हुई है, तो उसमें भी भारत एक तेज गति से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस ड्यूरेशन में भी। तो ये सब चीजें और जो हमें ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से हम एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भारत पे लोग विश्वास करते हैं। भारत से लोग, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो भारत को छोड़ना चाहता है या भारत में अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले देश
1: जी,
2: जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो भारत में आना चाहते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर मेहता, बहुत सुंदरता आपने कहा कि ट्रस्ट बनने में समय लगता है और बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता, और हम ये ट्रस्ट बिल्ड
2: जी।
1: कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स अशोक आपसे चाहेंगे ब्रीफली।
0: मेरा संदेश ये है कि सेमीकंडक्टर केवल चिप्स की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य की बात है। यह उद्योग, हमारे कारखाने, हमारे अर्थव्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। सरकार ने नीतियां बनाई है, उद्योग निवेश कर रहा है।

0: और भारतीय इंजीनियर दुनिया भर में चिप डिजाइन क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, उसके साथ साथ देश में नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस नींव को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि हम अभी 4C पर लगे हैं। 4C कौन से? इसमें एक है क्रेडिबिलिटी, हमारी अब क्रेडिबिलिटी स्थापित हो गई है पिछले 5 साल में जो काम हुआ है। कैपेबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डअप हो रही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो पार्ट 2 अभी अनाउंस हुआ उसके। पॉलिसी कंटिन्यूटी जो सरकार का चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, और कमिटमेंट ये सारे इंडस्ट्री का।
1: Wonderful.
0: तो ये 4C के तहत हमारे न्यू मजबूत हो रही है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है एज अ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और सेमी इंडिया, हम सरकार के साथ में, उद्योग के साथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ये देश का जो जर्नी है ये बहुत जल्दी आगे एक्सेलरेट होके सफल होगा।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चंडाक जी और डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे कार्यक्रम आने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे थे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी गौरा धवनलाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप इसे हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: நேர்களில் இதுவை கேட்டது. பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பொது சேவையில் 25 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததையொட்டிய சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் ஒளிப்பதிவு.